तरसब हूं। जेते बदन श्रेठ सब तार, आपे अपने बोझ उचार, तुम सब हीते रहत निरालम, जानत भेद भेद अरियालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि नील अनादि सांब, ताका मूल उचारत भेदा, जाको पेव न पावत भेदा। ताको कृपा हनन मानत, महामूढ़ कछ भेद ना जानत, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चिन्ह तने पेव।

आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजियां वा धन्यम। राग रतन परवार परिया, शब्द गावण आईया, शब्दोता गावो हरि केरा, मन जिने वसाया, कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया।

प्रणाम। अंगीकार्यो करे तेरा कार्य सब सवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदारो हर नाले।

मानव सावे नाम जिनकै मानव सिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रे साचा नाम मेराया धारू साच नामे आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटों जिस दिया एह

कबहू ऊंच नीच में बसा, कबहू सो घर खरंग हसा, कबहू नेंद चिंद व्यवहार, कबहू ऊबह कास पयाल, कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार, कबहू नृत्य करे बहु भांत, कबहू सोए रह दिन रात, कबहू महा क्रोध विकराल, कबहू सर्व की हो तरवाल, कबहू हुए बहे बड़ राजा, कबहू पेखारी नीच का साजा, कबहू अपकीरत महावा, कबहू पला पला कहावा, जो प्रभ राख तिव ही रहा, गुर प्रसाद नानक सच कहा, कबहू हे पंडित करे बख्यान, कबहू मोन तारी लावे ध्यान, कबहू तट तीरथ स्नान, कबहू से साधक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग हुए जिया, अणक जोन पर मह पर मिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखावा, जो प्रभ पावै तिव न चावै, जो तिस पावै सोई होए, नानक दूजा अवर ना कोए, कबहू सा संगत हो पावै, उस स्थान ते बौर न आवै, अंतर हुए ज्ञान परगास, उस अस्थान का नहीं विनाश, मन तन नाम रते एक रंग, सदा बस पार ब्रह्म कै संग, जो जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ का सद कुर्बान। श्लोक

गर्भ गले अष्टपदी, जिसका अंतर राजभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाना मैं जो बनवंत सो होवत बेष्टा का जंत। आपस कौ कर्म बंत कहावा, जन्म मरा बो जोन परम हवा। तान पुमका जो कर गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावा, नानकी हां मुक्ता गह सुख पावा। तनवंता हुए कर गरबावा, तृण समान का संग न जावा। बहु लश्कर मान खूपर करे आस, पल पीत ताका हुए विनास। सब ते आप जान बलवंत, खिन मैं हुए जाए पसमंत। किस न बद आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी। गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान, सो जन नानक दरगा परवान। कोट कर्म कर हाँ तारे, श्रम पावा सगले बिर थारे। अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुरग फिर अवतार। अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवा, हर दर कह कौ कैसे गवा। आपस कौ जो भला कहावा, तस भलाई निकट ना आवा। सर्व की रेण जाका मन होए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए। जब लग जाना मुझ ते कछ होए, तब इस को सुख ना ही कोए। जब यह जाना मैं किश करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग नेह चल ना ही चीता। जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभ कृपा ते बंधन टूटा, गुर प्रसाद नानक हौ छूटा। सहस खट्टे लाको उठतावा, तृप्त न आवा माया पाछा पावा। अनक भोग बिख्या के करा, नह तृप्तावा खप खप मरा। बिना संतोख नहीं को राजा, स्वप्न मनोरथ बिरथे सब काजा। नाम रंग सर्व सुख होए, बड भागी किसे प्राप्त होए। करण करावन अपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। कारण करावन करन हार, इसका हाथ कहाँ विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा हुए, आपे आपे आप प्रभ सोए। जो किश कीनो सो अपना रंग, सब ते दूर सब हु कह संग। बूझा देखा कर बबेक, आप एक आपे हनेक। मरण बिनसा आव न जाए, नानक सद ही रहा समाए। आप उपदेसा समझ आप, आपे रचया सबका साथ। आप किन्नो आपन विस्थार, सबका शुसका उह करना हार। उसते पिन कहो किश हुए, थान थनांतर एक सोए। अपने चलत आप करना हार, कौत कर रंगी अपार। मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी, गुर प्रसाद किनै बख्यानी। सच सच सच सब कीना, कोट मदे किनै बिरलै चीना। पला पला पला तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी श्रवण बख्याणी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपा नानक मन प्रीत। सलोका संत सरन जो जन परा, सो जन उदरन हार। संत की निंदा नानका, बहुर बहुर अवतार। अष्टपदी, संत का दुखन आरजा कटा। संत का दुखन जमते नहीं छुट्टा। संत का दुखन सुख सब जाए, संत का दुखन नरक में पाए। संत का दुखन मात हुए मलीना, संत का दुखन सो बाते हीना। संत के हते को रखा ना कोए, संत का दुखन थान प्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जे करा, नानक संसंग निंदक पी तरा। संत के दुखन ते मुख पवा, संतन का दुखन काग जो लवा। संतन का दुखन सरप जोन पाए, संत का दुखन त्रिगत जोन के रमाए। संतन का दुखन तृष्णा में जला, संत का दुखन सब को छला। संत का दुखन तेज सब जाए, संत का दुखन नीच नीच आए। संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावा ता ओए पीगत पाहे। संत का निंदक महातताई, संत का निंदक हिंटिक न पाई। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राजते हीना, संत का निंदक दुखिया अर्दीन।
संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत पावा ता उसका पी हुए मोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का निमित, संत के दुखी को डान लग, संत के दुखी को सब त्याग, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बेकारी, संत का दुखी जन्म मरा, संत की दुख ना सुख ते टरा, संत के दुखी कहो ना ही ठाओ, नानक संत पावे तले मिलाए, संत का दुखी अद बीजते टूटा, संत का दुखी कित काज ना पहुंचा, संत के दुखी कहो उद्यान परमाइया, संत का दुखी उजड़ पाइया, संत का दुखी अंतर ते थोता, जो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किश नाहे, अपन बीजा पे ही खाहे, संत के दुखी को अवर न रखन हार, नानक संत पावा तले उभार, संत का दुखी अम्बिल लाए, जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजा, जो पावक ईंधन नहीं त्रापा, संत का दुखी छुटे अकेला, जो बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक ज्योतिष पावै सोई थिया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगा मिला सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइय, संत का दुखी ना मरा ना जीवाइय, संत के दुखी की पुजै ना आसा, संत का दुखी उठ चला निरासा, संत का दुख ना त्रिष्ट कुए, जैसा पावै तैसा कोई होए, पया कीर्तना मेटै कोए, नानक जाना सच्चा सोए, साब कर तिसके उह करना हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभ की उस्तत करह दिन रात, तिसे त्या बहो सास ग्रास, साब काश वरता तिसका किया, जैसा करे तैसा कोथिया, अपना खेल आप करना हार, दूसर कौन कह विचार, जिसनो कृपा करे तिस अपन नाम दे, बाढ़ पागी नानक जन से सलोक, तजो से आनप सुर जनो, सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाय, अष्टपदी मानु की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक भगवान, जिसके दिए रह अघाय, बौर ना तृष्णा लाग आए, मारे राख एक आप, मानु का केश नाही हाथ, जिसका हुकुम बूझ सुख होए, तिसका नाम राख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन ना लागे कोए, उस्तत मन में करन रंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लेह जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, सत्संग बिनसत सब संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटा पाप जपिया हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगा नानक उज्जल मथा, बड पागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करह विचार, से तनवंत गणी संसार, मन तन मुख बोला हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाना, एत उत की ओह सोजी जाना, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिन्ह निरंजन जानिया, गुर प्रसाद अपन आप सुजा, तिसकी ध्यानो तृष्णा बुझा, साध संग हर हर जस कैत, सर्व रोग त्यो हर जन रैत, आनदन कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जान की आसा, तिसकी कटिया जाम की फसा, पार ब्रह्म की जिस मन पूख, नानक तिस न लागह दुख, जिस कहो हर पव मन चेत आवै, सो संत सुहेला नहीं डुलावै, जिस प्रभ अपना कृपा कर, सो सेवक कहो किसते डरा, जैसा सात ऐसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीझिया, गुर पर साध तत सब बुझिया, जब देखो तब सब किश मूल, नानक सो सूखम सोई अस्थूल, न किश जन्म न किश मरा,
आपन चलत आप ही करा, आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल मह आप, अणक जुगत रच थाप थाप, अविनाशी नाही किश खंड, तारन तार रहो ब्रह्मांड, अलख अभेव पुरख प्रताप, आप जपैत नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो सोभावंत, सगल संसार उद्धरा तनमंत, प्रभ के सेवक सगले उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारन, आपे मेल ले कृपाल, गुर का शब्द जप पय निहाल, उनकी सेवा सोई लागा, जिसनों कृपा कर बड पागा, नाम जपत पावा विश्राम, नानक तन पुरख का उत्तम करमान, जो किश कर सो प्रभ का रंग, सदा सदा बस हर संग, सह सुपाए हो वै सो होय, करण हर पछाण सोय, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सात ऐसा दृष्टाना, जिस ते उपजे तिस माहि समाए, ओ सोखण दान उन्हों बन आए,

फिर जाप अष्टपदी जब आकार एहु कछ ना दृष्टेता पाप पुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब वैर विरोध के संग कमात जब इसका वर्ण चेह न जापत तब हरख सो कहो किसे बिहपत जब अपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ के सुबत परम आपन खेल आप वर्तीजा नानक करण हर न दूजा जब होबत प्राप केवल तनी तब बंद मुकत कहो किस को गणी जब एक हर अग्मे पार तब नरक सुरग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुपाय तब शिव सकत कहो कित ठाय जब आप अपनी जोत तरा तब कवन डर कवन कत डरा आपन चलत आप करना हार नानक ठाकुर अगमे अपार अविनाशी सुख आपन आसन तहा जन्म मरण को कहाँ विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किस पूछद लेखा जब नाथ नरंजन गोचर गहदे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा जह निर्मल पुरख पुरख पात होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन रंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिदर लिगत को कीस जह जो स्वरूपी जो संग समावा तह किस पूह कवन त्रिपतावा करण करावन करण हार नानक करते का नाहे सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जह सर्व कला आपे परवीन तह वेद के तेब कहाँ कूचीन जब अपन आप उद्धारा तो शगन अपशगन कहाँ बिचारा जह आपन ऊच आपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा विस्मन विस्म रहे विस्माद नानक अपनी गत जानहु आप जह शल छेद भेद समाया ऊहा किसे व्यापत माया आपस को आप आदेश त्यो गुण का नाही प्रवेश जह एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जह अपन आप पतियारा तह कौन कथा कौन सुनन हारा बहु बेअंत ऊचते ऊचा नानक आपस को आप पहुँचा जह आप रचो परपंच आकार त्यो गुण मह कीनो विस्थार पाप पुन तै पई कहावत को नरक को स्वर्ग बंशावत आल जाल माया जंजाल हों मैं मोह परम पय पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बख्यान आपन खेल आप कर देखा खेल संकोच तो नानकेका जह अवगत भगत आप जह पसरा पसार संत प्रताप दोह पाख का आपह तनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपह कौत कर आनंद चोज आपह रस भोगन निर्जोग जिस पावा तिस अपना लावा जिस पावा तिस खेल खिलावा बेशुमार अथाह अगण ते अतोला जो बुलावो त्यों नानक दास बोला सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे बर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथा आप सुनना हार आप एक आप विस्थार जात से पावा त श्रेष्ठ उपाय अपना पान लय समाय तुम ते पिन नहीं किश होए आपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभ जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो सामदर्शी तत कबेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंतर सबता का हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखा तिस कोय न मारा सो मुआ जिस मनो बिसारा तिस तज अवर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाकर सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निधान बेअंत अपार नानक दास सदा भलिहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव जान आप अंतर जामी रहो व्याप प्रतपाला जीअन बहु पांत जो जो रचियो सो तिस तिहात जिस भावै तिस लय मिलाए भगत कर हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हर नानक एक जानिया जन लागा हर एक नाए तिसकी आस ना बिरथी जाए
सेवक को सेवा बनाई, हुकम बूझ परम पद पाई, इसे ऊपर नहीं विचार, जाका मन बस्या निरंकार, बंधन तोर पह निर्वैर, आनदन पूजह गुर के पैर, एह लोक सुखी है पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभा पह मेले, साध सांग मिल करो आनंद, गुण गावो प्रभ परमानंद, राम नाम तत करो विचार, दुर्लभ दे का करो उदार, अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुआओ, आठ पहर प्रभ पेखो नेरा, मिटे अज्ञान बिनस अंधेरा, सुन उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो, हलत पलत दुलिहु सवार, राम नाम अंतर उरधार, पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसा तिस सच परीखिया।

श्रेष्ठ दर्शन पेखद उद्धृत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बस सुहोत निहाल ताका निकट न आवत काल अमर पय अमरा पद पाया।

आप दिखाए, नानक तेह जन सो जी पाए, सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्यापर हया भगवंत, तरन माह आकाश पयाल, सर्ब लोक पूरन प्रतपाल, बाण तिन परबत है पाल।

अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरव गोबिंद मन अंतर की उतरा चिंद आसा नित्या गुत रंग संत जना की तुर मन मंग आप छोड़ बेनती करहो साध संग अगन सागर तरहो हर तन के पर लेहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित्व नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम सलोक साधके बचन अमुलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होते उधार आप तर लोक निस्तार सफल जीवन सफल ताका संग जाका मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद बाजा सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजा प्रगटे गोपाल महांत का माथे नानक उदरे तिनका साथे सरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पय सबरेन अमृत नाम सत्संग लैन सो प्रसन्न पय गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आल जंजाल बेकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्राप्त हरी नानक निबहि खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसा सोहत निधान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सबते ऊच पाए अस्थान बौर ना होवै आवन जान हर तन खाट चल जन सोए नानक जिस प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल परगास सबका मध सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् कविता समदर्शी एक दृष्टिता एह फल तिह जानक मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सुने इहो न

बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

बोले सो निहाल। परिवार का धन्यवाद है और परिवार वालों आईया हुई समूह संगतां का धन्यवाद है जिन्होंने परिवार के सदे पत्र ते पहुँच के परिवार का माण वधाया है। आईया हुई समूह संगतां वास्ते परिवार वालों गुरु के लंगर तैयार करवाए गए ने। आप संगतां ने कुछ समा दरबार हाल में बैठ के गुरबाणी शब्द कीर्तन सरवण करन तों परंतु गुरु के लंगर विचों प्रशादा छक के जाण की कृपालता करनी जी। कीर्तन की सेवा निभाउणगे भाई हरमनदीप सिंह जी, हजूरी रागी जथा सचखंड श्री दरबार साहब अमृतसर वाले। औतना पासों गुरबाणी शब्द कीर्तन सरवण करिए जी। वाहेगुरु जी का खालसा।

0: गुरु साहब कृपा कर इन्हीं कीर्तन दी हाजरियां प्रवान करने की कीर्तन करदे हुए बेंत भुलां दी माफी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: धन्यवाद इस्तकार योग भाई हरमनदीप सिंह जी, हजूरी राग जथा सचखंड श्री दरबार साहब अमृतसर वालियां दे कीर्तनी जथे दा, जो रस भिन्नी रसना द्वारा आप संगतां नूं गुरबाणी शब्द कीर्तन सरवण करवा रहे सन। भाई साहब जी रोजाना ही सवेर शाम के दीवाना में आप संगतां नूं गुरबाणी कीर्तन सरवण करवाउंदे ने, हाजरियां भर के लाहे प्राप्त करिया करो जी। अज दे समुचे समागमां दी सेवा भाई जुझार सिंह धालीवाल परिवार वालों करवाई जा रही है। परिवार वालों बेनती आप जी ने गुरु के लंगर विचों प्रशादा छक के जाने की कृपालता करनी जी। समा है लड़ीवार चल रही भगत बाणी की कथा विचार दा, सेवा निभाउणगे भाई गुरशरण सिंह जी चीमा। आओ तिन्नां पासों कथा सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
2: सतनाम, धन वाहिगुरु साहिब जीओ, तू समरथ एकथ अगोचर

बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी, सिखां दा मन नीवा मत उची मत दा राखा आप। वाहिगुरु हे अकाल पुरख अंतर जामी पंथ दे सदा सहाई दा तार जीव। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां तों जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दी दार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी। हे निमाणियां दे मान, नेताणियां दे ताण, न्योटियां दी ओट, ने आसरे के आसरे, अकाल पुरख अंतर जामी पिता वाहिगुरु जी आप जी के पवित्र चरण कमलां पास अरदास बेनती जोदड़ी। हे कृपालू शहनशाह आप जी की मेहर सदका, आप जी की पवित्र हजूरी दे अंदर संध्या काल दे दीवान सजाए गए। सजे हुए दीवाना अंदर आप जी की रब्बी बाणी दे पठन पाठ, गुरबाणी कीर्तन, कथा विचारां, ढाडी वारां, गुर इतिहासिक विचारां होईयां ने महाराज। समुचा प्रोग्राम आप जी की पवित्र हजूरी अंदर निभाउंदिआं होईयां बेअंत प्रकार दीआं भुल गलतियां खतावां आप जी ने बख्श लैणियां, अगां वास्ते समत बुद्ध मेहर करके बख्शिश करनी, पढ़ी सुनी बाणी ते इतिहास दे अर्थ भाव आईयां होईयां सरबत संगतां दे हिरदिआं विच वसाउणे मेहर करनी महाराज। सजे हुए दीवाना अंदर इस वक्त बेअंत संगतां ने आप जी के चरणां दे विच हाजरियां भरियां, सर्वा संगतां दीआं हाजरियां भेटावां अंदर प्रवान करनियां, चल के आए हुए कदम कदम लेखे विच लाउणे, अरदासां बेनतियां भावनावां गुरमत मुताबक परिपूर्ण करके दरो घरों गुरसिखी सिर भरोसा नाम दान मेहर करके बख्शिश करना। सरबत संगतां दे परिवारां दे किरत कमाईयां च बरकतां कारोबारी तरक्कियां वाधे मेहर करके बख्शिश करने, दुखां दर्दां दलिद्रां बिघनां दा नाश करके घरां विच सुखां दे प्रकाश करने, देशां विदेशां विच विचरदिआं सिर ते मेहर भरिया हथ रखना, दरों घरों शरीरक तंदुरुस्ती दी रोगता चढ़दी कला नाम दान निशनां दीआं दातां मेहर करके बख्शणियां। समुचे परिवारां विच परस्पर प्रेम प्यार एका इतफाक सदभावनावां मेहर करके बख्शिश करनियां, सेवकां दे कारजां दे सेवकां नूं सफलतावां बख्शिश करनियां, बच्चियां दे सिरां ते मेहर भरिया हथ रखदिआं होइआं बच्चियां नूं लंबी आयु, बच्चे माता पिता दे आग्याकार, देश कौम दा प्यार, नाम बाणी दीआं रहमतां, चढ़दी कला दा जीवन, नेक मार्ग ते चलण दी प्रेरणा, गुरु ग्रंथ गुरु पंथ आशे मुताबक जीवन जाच मेहर करके बख्शिश करनी महाराज। इस वक्त आप जी के पवित्र चरणां दे विच संध्या काल दे सजे हुए दीवाना दी संपूर्णता दी अरदास। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करना, बख्शो पवित्र हुक्मना मैं सही प्यारे, मेलो जिन मिलिया आप जी का।

अनुग्रह प्रसाद संतन कह हर नामा है मीठा जन नानक कौ गुर कृपा तारी सब अकुल निरंजन डीठा पयो अनुग्रह प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक कौ गुर कृपा तारी सब अकुल निरंजन डीठा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज गुरु पातशाह जी के मुबारक चरणों के विच सजे हुए साहिबान के आलमाना दरबार दियां हाजरियां भर रही जुड़ मिल बैठी गुरु प्यारी माणयोग साध संगत पड़भागे हाँ जो समय चो समा कढ सतसंगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी है एको नाम हुक्म है नानक सतगुरु दिया बजाए जीव दे महावाकां मुताबक आप सब सतसंगत रूप दे विच गुरु हजूरी दे अंदर जुड़ मिल बैठे सो धनवाद है गुरु सवारे सत्कार ते ढाडी जथे दा माण योग ज्ञानी बलवीर सिंह जी ब्यारी परवाले ते उन्हां दे जथे दा जो आप जी नूं ढाडी वारां गुर इतिहास आप जी नूं सरवण करवा रहे सन तो गुरु चरणा दे विच दीवान दी समाप्ति दी अरदास सरबत्ते पले दी अरदास होई है। गुरु साहब जी ने पावन मुख वाक बख्शिश किया जो आप जी ने सरवण किया पातशाह मेहर करन बख्शिया पवित्र गुरवाक मुख वाक साड़ी सब दी जिंदगी दा साड़ी जीवन दा आधार बने ये गुरु चरणा विच अरदास है और उहदे नाल ही सजे हुए दीवान की संपूर्णता है समाप्ति है। सुखासन की सेवा क्योंकि संगत हाले आ रही है थोड़ी देर सुखासन की सेवा थोड़ा रुक के की जाएगी। कड़ा प्रसाद का वर्तारा हो रहा है आपने जिन्होंने प्राप्त नहीं किया आप जी जरूर प्राप्त करो और गुरु का लंगर सबना वास्ते तैयार है सारी संगत आपो अपनी लोड़ मुताबक सब ने छक के जाना तो जुड़ मिल बैठी सारी संगत का कोटान कोट धनवाद। इस तरह हाजरियां भरते रहो तो गुरु घर दियां रौनकां वधाउंदे रहो सबना का धनवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

रहा सुन समाद रहा लिव लागे एका एकी शब्द विचार जल थल धरन गगन ता नाही आपे आप किया करतार ना तद माया मगन न छाया ना सूरज चंद ना ज्योत अपार सर्व दृष्ट लोचन अब अंतर एका नदर सोत्र पवन सार पवन पानी अगन तिन किया ब्रह्मा विष्णु महेश आकार

संतोखी गिन सच्चो सत्याया ओनी मंदे पैन रखियो कर सौ कृत धर्म कमाया ओनी दुनिया थोड़े बंदना पानी थोड़ा खाया तुम शिष्य अगला नित्य सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

अन्न ना खाया, सदगवाया, बोध पाया, दूजा पाया, वस्त्र ना पहरे, अहंस कह रे मोह।

जति सदावै जुगत न जाने छड बह कर बात सब को पूरा आपे होवे कट न कोई आखे पत परवाना पिछे पाई है ता नानक तोलिया जा।

0: मत पिटै इहु अन असाडा फिटै तन फिटै फेड करेन मन जुठे चुली परेण कहू नानक सच त्याईए सुच होवे ता सच पाईए पौड़ी
1: अंदर सब को वेख नजरी हेठ चलाइंदा आप ही दिवड़ियाई आप ही कर्म कराइंदा वडो वडा वड मेदनी सिरे सिर तंदे लाइंदा।

0: मुख वसै नित नित होए कुवार। सुचे इन आखिए है बहन जे पिंडा तूए, सुचे से नानका जिन मन वसया सोई पौड़ी।
1: अरे पलाने पौन वे हरंगी हम स्वादिया, कोठे मन बाड़िया लै बैठे कर बसा दिया, जीत कर मन भाव दे हर कुछ जिन्ना ही हार दिया। कर फरमाश का वेख मन विचार जरिया जी बुनहार जरिया जी बुनहार।

जुगो जुग अटल, चवर शतर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर जारा जहूर, शब्द गुरु बाणी के बोहे थमरत के दाते, दसा पातशाहियां दी जोत, साहब सच्चे पातशाह सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच अमृत वेले तो सजे दवाना दियां हाजरियां भर रहे सन्मान योग

सिर दे विच वजे ते ए पापी दा पेशाब दा बन माड़ा मोटा खुलेगा, इन्हें बचना नहीं। भाई तारू सिंह कहिंदा मैं की करां दस सवेक्षा, मैं की करां? कहिंदे तू सेवा कर चल के। हुण भाई साहब दे चरणा वाल जदों झाती मारी सी ना, जोड़ा है नहीं सी चरणा दे विच, ओ सूरमा चरखड़ी दे उत्ते नचिया सी, कैंची दीआं धारां दे उत्ते नचिया, किते ना किते जोड़ा विसर गया। हुण सुबेग सिंह ने नवा जोड़ा बाजार चो लिया के ते भाई तारू सिंह दे चरणा नूं छुआया ते नाल आखता तारू सिंह कर सेवा चल के। ते भाई तारू सिंह आखदा कहिंदा सुबेग सिंह ये सेवा मैं नहीं, ये उस मोची दे हाथ दे विच जिहदे हाथ दे विच रंबी सी ना, बस उसे मोची दे हाथ दे विच जोड़ा फड़ा दे, बस वह सेवा वह करेगा। हुण बाजार दे विचों उस मोची नूं सद के लिआंदा ते गुरु प्यारे हाथ दे विच फड़िया होया जोड़ा, ते ये भी पड़भूंजे वांग अपने मन का गुबार कढ़न वास्ते इन्हें फड़िया जोड़ा, ते यकरिया खां दे विच सिर दे विच जिवें छित्रां दा मीह वरसाउंदा ढाडी जथे दे पासों, हे

तेरी। तुम मात पिता हम बारिक, तुम बरी कृपा मैं सुख कनेरे। कोई ना जाने तुमरा ऊचे ते ऊचा भगवंत, सगल समगरी तुमरे सूत्र।